वो तितलियां साथ रखती है, मेरी दुनिया अपार लगती है जब कंधे पे मेरे वो हाथ रखती है। इस प्यार को खोने नहीं दूंगा, तुझे खुद से जुदा मैं कभी होने नहीं दूंगा। खुशी के आंसू और बात है, लेकिन तुझको मैं वैसे कभी रोने नहीं दूंगा।

0: investments that could promote economic growth, create jobs and strengthen Kenya's energy sector.
1: A number of people are asking questions about that East Africa refinery project, but I want to challenge them. In all ways, they don't have answers to the questions they're asking through direct questions to me as the cabinet secretary responsible or in charge of the docket of energy and petroleum.
0: That's the news update on East FM.
2: East FM News, East FM, Kenya's premier Asian mix. This is East FM, Kenya's premier Asian mix.
3: Bemisal Andaaz with Parveen Atom.
4: Ochen Fatima Qasim Ali ne kaha hai ki this riddle, iska answer hai old age. Ye to answer unhone nahi diya. Chirag Patel kehte the riddle describes five crew members of the ill-fated Titan submersible that imploded during a dive to the Titanic wreck. Chirag Patel from Karatina. Okay, main abhi batati hu ki answer unhone kya kaha hai. Aur yahan par Rasila Shah kehti Parveen ji, Jampur village in Gujarat near Gir National Park, India is known as an African village. It's home to the Siddhi community. Ji, ye suna hua hai. Rasila, Siddhi community wa rahe the, jo Africa se gaye the. These people now call India their home with no memory of the African language. So if you visit this place, they will speak to you in clear Gujarati. There are two close villages, Jambur and Sivan. We are told there are around 500 people living Siddhis. बिल्कुल सही समीन उनकी आप देखें बेहद काला भी उनका रंग है और फीचर्स भी कुछ अफ्रीकी दिखते हैं लेकिन वो दिखते भारतीय मतलब के इंडियन कुछ है उनमें लगता खैर अब यहां पर टॉकिंग अबाउट रिस्पेक्टिंग आवर करेंसी एज पर द ट्रेडिशन money is lakshmi एंड इवन इफ अ कॉइन फॉल्स डाउन बाय मिस्टेक वी लिफ्ट एंड बाउ टू इट कहते जब कोई सिक्का भी गिर जाता ना हम झुक कर उसे उठा लेते हैं when I was very new in Nairobi I was told about the muggery and theft that people are subjected to on the streets and how people have to keep it safe I noticed in a bank a person had withdrawn money and he put it in his socks on his feet for safety that was big cultural shock for me कल्पना मां के ये तो करना पड़ता है क्या करें पैसे को कहीं ना कहीं छुपाना है बैंक में भी आपका पैसा नहीं है महफूज खैर अभी करेंसी की आपने इज्जत करनी है पांव पे नहीं रखना ठीक है ना
5: जी आपको व बेमिसाल के सभी लिसनर्स को मेरा नमस्कार आज मैं कुछ लाइनें मुझे कैसी सहेलियां चाहिए इस पर बोल रही हूं मुझे कैसी सहेलियां चाहिए मुझे मेरी जैसी शरारती पगली और चंचल सहेलियां चाहिए जो करती रहती हों थोड़ी थोड़ी बेवकूफियां और गलतियां और थोड़ी थोड़ी नोक झोंक भी जो टांगे मेरी खींचें और मुझे हवा में ना उड़ने दें जो टांगे मेरी खींचें और हवा में ना उड़ने दें लेकिन कभी जमीन पर भी ना बिखरने दें जो मेरे दिल की बात सुने दिल खोर कर और अपने दिल की बातें भी मुझे सुना सकें जो मेरे जज्बातों को अपने आप ही समझ ले मुझे ऐसी अमीर दिल सहेलियां हर रोज चाहिए मुझे मेरी जैसी शरारती और चंचल सहेलियां चाहिए जिनके सामने होठों की हंसी रुके ही नहीं और दुख मेरे सामने कभी भी टिके नहीं मेरी उम्र की लकीरें जो मेरे जज्बातों से मिटा दें मुझे मेरी ऐसी प्यारी प्यारी सहेलियां आज भी कल भी और हर रोज चाहिए थैंक यू रेखा वालिया
4: अच्छा रेखा वालिया आपने कहा है बहुत अच्छा कहा है कि मुझे मेरे जैसी सहेलियां चाहिए चंचल पगली नोक झोंक करती मेरी टांगे भी खींचे लेकिन जमीन पे गिरने ना दे मैं कहती हूं कि आपने कहा उम्र की लकीरें वो आपको बुलाने नहीं देंगी बेशक कितनी भी अच्छी दोस्त होंगी

वो ज़रूर इस बात को यकीनी बनाएंगी कि आप अपनी उम्र को याद रखें, एक आधा साल कम ना करें, और अगर आपने कम करने की जुर्रत भी की तो वो आपको बता देंगी कौन से महीने में आपकी पैदाइश हुई थी, कौन से मैटरनिटी में और कौन सा वो साल था। और ये भी आपको सहेलियां बताएंगी कि मैं आपसे छोटी हूँ। आप देखिएगा समिन, जो भी सहेलियां हैं वो एक साथ आकर ना बस यही करती हैं, मैं उनसे छोटी हूँ और दूसरी कहती मैं भी उनसे छोटी हूँ, कम उम्र हूँ, वैसे ये नहीं सोचती कि किया क्या है, जितनी भी उम्र मिली है उसमें किया क्या है। ओके रसीला, आपने कहा है कि फनीली 100 ईयर्स, ओके ये बात भी करते हैं, हिस्ट्री की बात है, रसीला की बात है, लेकिन रेखा वालिया ने जो सहेलियों का कहा है ना, बहुत अच्छा है। रेखा आपकी बात में आधी सच्ची आधी झूठी है।

0: Kenya's premier Asian mix. East FM.
1: महफिल में मेरी आपका वेलकम है हजरात, भूल के गोले उबम रिलैक्स कीजिए आज। अरे अरे, अभी अभी तो आए हैं, उठना नहीं जनाब। शम्मा हूँ नई नई, जलूंगी